0: ताश तुम कुफा भी
1: रेफ़मिसी इन फितुराना चिलाकन फावका चिमाइची अम्म नारन नी फ्लारंबे जे चिंतुना बस फ्लारंबे आराध सचापन रोने फावे चिनी तिन फितुराना रोती फितुगुनियालन रिटनी नंबर फुलतोला रावो निदन संदालबेन फावका अमनालन मार्ते सनीचने तुकुन फनीर टेटे नरोता मिसाई.